0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप नहीं के भी बाहर गुहार हैं यहाँ यात्रा है आज हमें सीखना है वो सुख मस्माई दिखा रहे हैं जिसका
0: हे 氏下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓雾
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 动物这是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛但我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息